गुरु साजी से निवाजी सासव जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच परम दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनु श्री ऋषभ कहने हैं सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसनु पा कहने हैं सारे गामा पा पंचमा स्वर जो है वो इसका वजीर स्वर है। इन दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवे हुण पहला जो रहाव है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नु असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कोम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानियां और ताना लगानी। कोम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इस नू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं सतगुरु।

कि मनुख आया है सेवा सिमरन परोपकार करके उस प्रभु दे नाल मिलाप करना है, अपने जीवन नू पवित्र रखना है, श्वास रखना है। जिस तरह समुंदर दा पानी हवार बन के बदलां दी राही जाके दूर वसदा है, पर जेड़ा जल अपने मालिक वल चल पैंदा है वो कदे ना कदे जरूर फिर समुंदर विच आ मिलदा है। इसे तरह साड़ी आत्मा भी परम आत्मा तो विछड़ के आई है, जिन्हां ने अपने मन नू नाम जप के सेवा करके सदा निर्मल रखिया है, क्योंकि साड़ी आत्मा एक बूंद है, ओ परमात्मा एक शौ सागर है। जिसले गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा भाई सदा इस बूंद नू निर्मल रखो, नाम जप के सेवा करके सिमरन करके। जिवें जल आ रहा है, जेड़ा ता जल अपने मालक नालों विछड़ जांदा है, गड़ियां विच पै जांदा है, टोयां विच पै जांदा है, आप देखदे हो उस जल दा की हाल होंदा है। उस जल ते काई आ जांदी है, कीड़े पै जांदे हन, मुछक मारन लगदा है। इसे तरह जदों असी परमेश्वर दे सिमरन तो नाम तो विछड़ जांदे हां तां साडी भी मन दी इही हालत होंदी है। इसलिए रब दे प्यारे जे होंदे हन उन्होंने नाम नूं ही अपने प्राणा दा आधार बना दिया है। नाम विसरे उन्हां दी मौत हो जांदी, क्योंकि जे श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जावे तां इस शरीर दा अंत हो जांदा है। ते जे परमेश्वर दे नाम नूं नहीं जपदा जेड़ा मनुख उहदी आत्मक मौत हो जांदी है। इसलिए आत्मक जीवन रब दे प्यारे जीउंदे हन, जिस करके ए

बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने।

उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

सेवा कर ले। महाराज बड़े खुश हुए, कहते चलो आज इंज ही ठीक है। कहते पिंड कट्ठा होया सी सो राम नगर, पिंड के मुखी एक फड़न तो कह आ दो सिख तेरे नाल, दूजे फड़न आ तीन सिख तेरे नाल, तीजे फड़न आ दो तेरे नाल, इन्हों घर ले जाओ, आराम भी कराना प्रशादा भी छकाना, या प्रशादा छका के फिर मोड़ देना सेवा भी, इंज घरों करी हो जाएगा सौखा काम। कहते उस बरादरी का एक सिख बहुत गरीब वही बच खड़ा सी, मुखिया ने उहदी भी बांह फड़ ली, तो जदों बांह फड़ ली वेखिया तो गरीब बड़ा, कहिंदे उहदे नाल ना दो नहीं तोरे, पांच नहीं तोरे, एक तोरिया, कहिंदे एक दी तू सेवा। हुण सारा कट्ठ होवे कट्ठा, सामने होवे कलगियां ला है जी, पिंड होवे कट्ठा, तो कई वारी ना नहीं हुंदी। कहिंदे आऊं सिख दी बांह फड़ ली, उस सिख दा नां इतिहास च आया भाई मिलागर सिंह, जिहड़ा उस घर गया, घर वाले का नाम नहीं ते आज पता लगा, जिन्हें खड़े है गरीबड़े सिख ने उहदा नाम नहीं, जिहड़ा गया उहदा नाम भाई मिलागर सिंह है। जदों कहिंदे ओ अपने गुरु गोबिंद सिंह दे सिख नूं घर ली आ रहा है ना गरीब बरादरी दे कहण ते, तां राज सोचां सोचदा जांदा पिया खावांगा की, घर है कुछ नहीं। कहिंदे अपने घर ले जा के बंदे नूं जिवें कोई सोच लगी होवे की खुआवा की खुआवा, किन्ना दो चार मिनट सिख खड़ा रहा, सानू कोई अपने घर जाके जे खड़ा कर दे उत्थे काम शुरू हो जाता है। आ भी निर्दन नूं पालना है। भाई मिलागर सिंह कहिंदा गुरु के प्यारे बिठाएगा नहीं, कहण लगा सिखा मेरे घर चंगी चादर भी नहीं, जिहदे ते तैनू बिठावा, ते मोढ़े ते ना हजूरिया पिया। सिख ने वह फड़ लिया, कहिंदा यही बिछा दे ये ते बह जाने, सिखा ये परना मैल है झूठ है। सिख ने जल मंगवाया, पांच पौड़ियां पांच बारी पहली पौड़ी पढ़ के जल छिणकिया, कहण लगा बैठन योग हो गया। हुण बिठाया ते सात संगत पतीले विच पानी पा के ना, पानी वो गरीब परिवार ते पीलू अंगूठे नाल पोले कर करके ना पीलू, ते आऊं भाई मिलागर सिंह नूं फड़ांदा ते मुंह उधर नहीं करदा, शर्म आउंदी है, ते पानी दा गलास नाल रखता ते पीलू खवा रिहा पीलू, ते नाल मुंह उधर करके कहिंदा सिखा जो होगा प्रवान कर लई, मेरे घर गरीबी बड़ी। हुण खालसा जी आ भी निर्दन नूं पालना जे, इतिहास लिखिया दो गलास पानी ते चार पीलू भाई मिलागर सिंह ने खाधे, चार पीलू ते पानी दो गिलास पी के आवाज दिती सिखा मैं तृप्त हो गया। आप सतनाम हूं जिहड़ा गरीब सिख सी ना, वह सोचदा कि जां ते सतगुरु नूं शिकायत करेगा जाके, ते जां जरूर रौला पाएगा, इत्थे भेजा प्रशादा की मिलना, ब्याह प्रशादा नहीं मिले, ब्याह प्रशादा की मिलना, चावल भी नहीं मिले, चावल की मिलने कोई बहे चावल भी नहीं मिले, पीलू मिले। पर हैरान रह गया वो गरीब सिख के गुरु गोबिंद सिंह दा सिख गल च पल्ला पा के कहिंदा सिखा तेरा नां की है, वो अजे भी डरिया नां क्यों पुछ रहे हैं, तेरा नां दस्सिया नहीं, सिखा जो गुरु ने तेनू बख्शिया तू मेरी सेवा की अरदास करनी तेरी, उहदी अरदास की सतगुरु इहनू चढ़दी कला बख्शी। खालसा जी यह भी निर्दन नूं पालो कि सवेर दे दवान विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोराम नगर विच स्पेशल भाई मिलागर सिंह नूं खड़ा करके सारी संगत नूं बचन सुनाया कि इस सिख नूं राती प्रशादा भी नहीं मिलिया, इस सिख नूं राती कोई चावल भी नहीं मिले, पीलू खाधे ने पर तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। दूजे बने मसंदां दा नक्शा खिंचया कि कई कुछ लोग उहनां नूं छकाउंदे सी पर उह डरावा पांदे सी साडी सेवा ना कीती तुहानूं शराब दे देंगे, इहनूं पीलू मिले ने पर इह वी तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरी संगत विच इह गल आखी सी धन सिखा धन सिखा तेरी धन कमाई, तेरे वर्गी इहो जी निमरता इहो जिहा जरना
ਧਨ ਸਿੱਖਾ ਧਨ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਖਿਆ ਧਨ ਦਾਤਾ ਧਨ ਦਾਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਧਨ ਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਔਗਣ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲ ਖੋਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਾਨਾ ਸੀ ਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸੀ, ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਾ ਕੂੜਾ ਫਰੋਲਾ ਕੂੜਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰੁਮਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ, ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਪੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਮੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟੱਪ ਮਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਰੱਖਤੀ, ਫੇਰ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਕਦੀ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਰ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ।

अमुल अनमोल ते दरगाही बाणी दा कीर्तन अते समाज सुधार जीवन जुगत अते अध्यात्मक विचार भाई गुर इकबाल सिंह गुरुद्वारा माता कौलां जी वाले तिना दी रसना तो सरवण कर रहे सी। भाई साहब तो गुरु नानक पातशाह जी निष्काम सेवा लै रहे हन। आप संगत दी दित्ती माया रूपी सेवा नाल अमृतसर लुधियाना जलंधर जंडियाला गुरु बरेली ते दिल्ली जमुना पार विधवा बीबिया दे केंद्र चल रहे हन। इस दे नाल ही देहरादून लुधियाना जंडियाला गुरु ते अमृतसर विच हस्पताल दे रूप विच सेवा अते होर 46 जगह धार्मिक ते समाजिक सेवा चल रही हन। हर पल हर घड़ी हर पक्ष तो आप संगत दी असीस दी लोड़ है। भाई साहब वालों बेनती है अमृत छको अमृत वेला बनाओ अमृत बाणी नाल जुड़ो।

पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे, हर एक सिमर एक सिमर प्यारे, जप मन नाम एक आधार, हर एक सिमर एक सिमर प्यारे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह इस बाणी दे कर्णहार, इस बाणी दे रचनहार, पावन पवित्र बाणी विच उपदेश देंदे ने जी, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे ही प्यारे। गुरमुख प्राणी जीव एक हरि वाहिगुरु दा सिमरन कर, एक दे लड़ लग, एक नू अपना बना, एक ते आसरा रख, एक ते भरोसा रख, एक दा ही बन जा, क्योंकि बाणी विच उपदेश है, जीव तेरे मन अंदर इच्छावां बड़ियां ने, भावनावां बड़ियां ने, तू बड़ा कुछ चाहना है, ते मिलेगा कदों, जदों एक नाल प्यार करें। सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, जे ओ परमात्मा एक वल हो जाए ना, सबे वस्तुआं प्राप्त हो जांदियां ने। इसलिए साहब आखदे ने जीव एक दा बन जा, ते एक नू अपना बना लै, जदों अपना एक नू बना लेंगा एक दा बन जाएगा, कार्य सारे रास हो जाएंगे। हर एक सिमर एक सिमर प्यारे, जीवन पद निर्वाण एको सिमरी है, दूजी नाही जाए किन बिद तीरी है। हर एक सिमर

छा नाम अधारंग मजे ब्रह्म तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चों नहर वगा दिती, इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खण दे डुबदे बेड़े नू, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नू, ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगम्मी बाणी नू मेरे मन दी।